0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ाल लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना थीन ना झोला फाटल हुई थीन कई एक आनल झोला दस काटस बाटीन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने कुलटमा लाग्ने छटपटी हुने मुटु धेरै ढुकढुक हुने जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: नगरपालिकाको सूचना। नगरपालिका भित्र सञ्चालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौं।
1: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौं।
0: यस टिकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा, बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौं।
1: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि यथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गराउं। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली।
2: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाय।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई में फोन करी आ बा का सरसफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सरसफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 0 26
2: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि
3: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू सडक किनारमा पशु चौपाया नबाँध्न र सडक किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ साथै सडक किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू हासक खोज खबर में यहां करण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहलबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। आज 32वां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस तमाम दिवस के अवसर में कार्यक्रम करती जानकी गांवपालिका के दुर्गौली में अंतरक्रिया हुई। उज्यालो बहुद्देशीय सहकारी संस्था 3700 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन 285 जाने उपचार सेवाले नै। टीकापुरमा सम्राट खनाल चर्चित रियालिटी शो द भाइस अफ किड्स के फाइनलमा प्रवेश। भोट गर्न सम्राट के आग्रह। एनपीएल 2026 के मिति घोषणा। देवारीमा फे खेल हुइन। पूरा खबर। आज 32वां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस तमाम कार्यक्रम करके देशभर मनाइती बाटै उहाँ अवसर में जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 1 दुर्गौली में फे कार्यक्रम हुना कहलवा। दुर्गौली में आदिवासी भाषा संस्कृति पहचान संविधान में प्राप्त अधिकार संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम हुना बा। नेपाल आदिवासी उत्थान समाज जानकी 1 दुर्गौली के आयोजना हो। जानकी गांवपालिका के सहकार्य में अंतरक्रिया आयोजन तर्गिल हो। आयोजक से कार्यक्रम है सफल बनेना सरकार वाला हुकरण पत्रचार से लेके आवश्यक व्यवस्थापन के तैयारी करती रहल आदिवासी उत्थान समाज जानकी 1 के अध्यक्ष दिनेश थारू जानकारी दिलबाट। आदिवासी के भाषा संस्कृति संरक्षण करना अधिकार संरक्षण प्रवर्धन संबंधी सचेत करैना लगायत के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजन करते रहलक वहां के कहबा। कार्यक्रम में आदिवासी उपकरण के भाषा संस्कृति संरक्षण अधिकार संरक्षण संवर्धन राज्य से बनाई पर्ना नीति निर्माण में सरकार से करना काम के विषय में छलफल केन्द्रित रहना बटवा गिलवा। कार्यक्रम में महिला युवा वर्गहर लगायत के उपस्थिति रहना बा। कार्यक्रम में आदिवासी जनजाति के पौराणिक गीत कविता पौराणिक कला के प्रस्तुति समेत देखने बटा गिलवा। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड शक्ति के आयोजनामा शनिचर के संचालन हुलक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा नाक कान घाँटी के समस्या के उपचार गर्न तथा परामर्श प्रदान गरिबा। सहकारी संस्था से बचत संकलन तथा ऋण लगानी गर्न के साथै अन्य सामाजिक काममा फे सहयोग गर पर्न रहेको से उहे सामाजिक कार्य अन्तर्गत के यी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन करगिल सहकारी के व्यवस्थापक रामकृष्ण चौधरी के कहाइबा। स्वास्थ्य शिविर में नाक के एलर्जी रलक नाक में मासु पलायल सक गैस्ट्रिक के कारण

0: सत्य से समय फाइनल में प्रवेश करल के हैं। अब फाइनल प्रवेश के लग अपने है वोट करके सहयोग कर देना गायक खनाल आग्रह करले बाटे। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा मानसून के न्यू चापीय रेखा सरदर स्थान के आसपास रहल बा, जेकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलना बा। बागमती और गंडकी प्रदेश के कुछ स्थान तथा कोसी लुम्बिनी कर्णाली प्रदेश के कम स्थान में हल्का से लेकर मध्यम पानी पड़ती रहल बा। आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलना बा। कलसै देश के हिमालय भूभाग के कुछ स्थान में मध्यम सम के समेत वर्षा के संभावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग में ढेर स्थान में समेत मध्यम सम के वर्षा के संभावना बा। लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ स्थान में साथ ही कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग में समेत ढेर स्थान में मध्यम सम के वर्षा के संभावना बा। कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग में साथ ही कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी उत्तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी वर्षा के संभावना बा। आज रात के देशभर साधारणतया मौसम बदलना बा। देश के हिमालय भूभाग में कुछ स्थान में वर्षा के संभावना बा। कोसी गंडकी लुम्बिनी और पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभाग के साथ ढेर स्थान में मध्यम पानी पर्न संभावना बा। मधेशो कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में तथा बागमती प्रदेश के तराई पहाड़ में समेत कुछ स्थान में मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। कोसी गंडकी और पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभाग में साथ ही बागमती प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्न संभावना रहल महाशाखा से जनायल बा। ऐलाली जिला के जानकी गांव पालिका सात अंतर्गत संतपुर ओखरपुर चौक में रहल एक सुनचांदी पसल में गैल रात के समेत चोरी हुई बा। सतर तूर के चोरी कर लग स्थानीय होकर बताएल बात है। घटना के अनुसंधान होते थे रहल प्रहरी से जनायल बा। प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बाजुरा के बड़ी मालिका मंदिर में वर्ष भदौ एक गते से नई पूजा आज शुरू हुई बा। मुख्य पूजा भर भदौ 11 गते हुई ना। मंदिर के पुजारी नेत्र उपाध्याय जानकारी दिले बाटे। दैलेखमा ट्रक संगे मोटरसाइकिल ठक्कर हुके मोटरसाइकिल दबगिल बाटे कलसे हुकार मौत हुई बा। दैलेख के डुंगेश्वर गांवपालिका दुई तल्लो डुंगेश्वर बजार स्थित के कर्णाली राजमार्ग में ट्रक को मोटरसाइकिल ठक्कर खाके मोटरसाइकिल चलाइते दबलक बटागिल बा। कैलाली की गोदावरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के 41 वर्ष के प्रेम बहादुर रोकाया क्षेत्र की घटना स्थल में नई मौत हुई। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय दैलेख के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ प्रहरी नायक निरीक्षक वरिष्ठ सय जय सिंह गुरूंग जानकारी दिले बाटे। कालीकोट के पलाटा गांवपालिका में संचालन रहल अस्पताल में वाईफाई चलाई नई देलक कहती स्वास्थ्यकर्मी ऊपर मारपीट कर लग आरोप में तीन जहान पकड़ाव कर गिलवा। कालीकोट प्रहरी से शुक्रवार समेत पलाटा गांवपालिका नौ स्थित के प्लाटा अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक तथा नर्स ऊपर हाथपाट कर लग आरोप में तीन जहान पकड़ाव करल जनायल बा। जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट से जारी कर लग विज्ञप्ति में अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक तथा नर्स ऊपर दुर्व्यवहार अभद्र व्यवहार करना हो अस्पताल अनाधिकृत रूप में प्रवेश करके सामान तोड़फोड़ कर लग आरोप में तीन जहाना नियंत्रण में लेहल उल्लेख करल बा। जिला प्रहरी कार्यालय कालीकोट के सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुरेश खत्री के अनुसार घटना बारे अनुसंधान हुई रहल बा। खोजखर में फेन से विश्राम विश्राम पास से फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीका प्रेम।
1: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिकाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टीकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
1: तपसिल
2: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी,
1: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी,
2: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
1: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
2: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
1: थप जानकारी लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
2: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
3: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
7: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
8: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ब्याग, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।
0: विश्राम पाछे फेर स्वागतमा। नेपाल मानव धर्म सेवा समिति टीकापुर शाखा आश्रम व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्षमा मन देवी अधिकारी चयन हुलबाटै, सिलचरकी हुइल भेलासे आश्रम व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्षमा धनबहादुर खड्का, सचिवमा रतन कुवर, सहसचिवमा जानकी कुवरको सदस्यमा दिव्येश्वरी अधिकारी, सदस्यमा दिलीप आले समेत प्रयाग दत्त उपाध्याय, रामकुमारी चौधरी, शिवालाल तिवारी चयन हुलबाटै, उसको सल्लाहकारमा पूर्वाध्यक्ष उक्ता काशीराम ढुङ्गाना, भेषराज तिमिलसेना, नरेश खत्री चयन हुलबाटै। देशकै तमाम स्थानमा खाना पकाइन ग्यास बिक्री वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकार उद्योग तथा डिपो अनुगमन हित तीव्रता बनाएल बा। साबिक केसेफे ढेर परिणाममा ग्यास आयात हुति रहल बेलामा फे नेपाल आयल निगमकै दावी बीच सहजे ग्यास नै पहिला कहती सर्वसाधारणकरणकै गुनासोके शीघ्र सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव से काठमाडौँमा रलक ग्यास उद्योग डिपोमा अनुगमन गरल बाटै। ओ नेपाल प्रिमियर लीग एनपीएल 2026 की मिति सार्वजनिक करबा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान से शनिचर के संजय के एनपीएल के तेसरा संस्करण के लाख मिति घोषणा कर गेले हो जेकर अनुसार एनपीएल में तेसरा संस्करण कार्तिक 9 गति से लेके मंगसिर 5 गति सम्म हुन कहलबा एनपीएल 2026 में आगामी अक्टोबर 26 से लेके नवम्बर 21 सम्म समेत हुन बेहोरा अवगत करागिलबा क्यान के सचिव पारस खड्का से जारी करलक विज्ञप्ति में कहगिलबा एनपीएल के लाख अक्सन सम्पन्न समेत हुसेकलबा कलश से अथवा तमाम टोली बीच विदेशी खिलाड़ी हुकरा अनुबन्ध गर्न क्रम शुरू हुई बताइल बाटै। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। आज 32वां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस दिवस के अवसर में जानकी गांव पालिका के दुर्गौली में अंतरक्रिया हुई ना। उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्था सती से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन 285 जने उपचार सेवा लेने। टीकापुर के सम्राट खनाल चर्चित रियलिटी शो द वॉइस ऑफ किड्स के फाइनल में प्रवेश भोट करना सम्राट के आग्रह ओ एनपीएल 2026 के मिति घोषणा देवारी में फिर खेल खेला जिना। लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकती अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाफ सुनते रहिए राम राम।
9: कार्यक्रममा सहभागी भइदिने बारेको सूचना। नेपाल आदिवासी उत्थान समाज जानकी एक दुर्गौली कैलालीको आयोजना र जानकी गाउँपालिकाको सहकार्यमा 32वां अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाउन यस पालिकाभित्रका आदिवासी अगुवा बुद्धिजीवी युवा महिला वर्गहरूबीच आदिवासी भाषा संस्कृति पहिचान र संविधानमा प्राप्त अधिकार सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा युवा महिला अगुवा वर्गहरूको सक्रिय सहभागी हुने गरी पौराणिक गीत कविता पौराणिक कला तथा फेसबुक सहित उपस्थित भइदिन हुन विनम्र अनुसहित सादर निमन्त्रणा गरिन्छ। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी रहनुहुनेछ। कार्यक्रम हुने स्थान जानकी गाउँपालिका एक कृषि हाट बजार दुर्गौली। कार्यक्रम हुने मिति साउन 24 गते। समय बिहान 11 बजे। नेपाल आदिवासी उत्थान समाज दुर्गौली एक कैलाली।
10: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
11: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
10: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
11: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
10: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
12: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वडा कार्यालय के अनुरोध।
1: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडावासी दादु भैया दिदी बहिनी हुक्रे सड़क के किनार में पशु चौपाए नई बान देवी सड़क किनार में माल वस्तु नई कुरा देवी साथे सड़क किनार में पशु चौपाए बांध के ढुंगा बालुआ गिट्टी मल कुरा के दुर्घटना हुईले से एकर जिम्मेवारी स्वयं व्यक्ति हुक्रा ले पर्ना बा।
0: जानकी गाउँपालिका तीन नम्बर वाडा कार्यालय लाइकपुर।
2: एनसेल प्याक किन्नु भयो त? जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भयो त? शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे घुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटास तरह तुहार रामपुरान दीदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कतरा सुघर बनाकन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भाटवट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
2: टीकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870 10672
3: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरा।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में। रख गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना।
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवार का दिन तपसिल को स्थान र समय में होने भएकोले सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
3: साधारण सभा हुने स्थान टीकापुर योगाश्रम को हल ब्लक नंबर 18, समय बिहान 11 बजे।
4: टीकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 091-560-892।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण वडाहरूमा रहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित लाभग्राही स्वयं तपसिल बमोजिमको नवीकरण शिविरमा उपस्थित भई भत्ता नवीकरण गर्न गराउन हुन अनुरोध छ।
5: शिविर सञ्चालन हुने स्थान वडा नम्बर 2 को कार्यालय साउन 20 देखि 25 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 3 को कार्यालय साउन 26 देखि 28 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 5 को कार्यालय साउन 29 देखि 31 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 6 को कार्यालय भदौ 1 गते देखि 3 गते सम्म,
5: वडा नम्बर 7 को कार्यालय भदौ 4 देखि 6 गते सम्म,
4: वडा नम्बर 8 को कार्यालय भदौ 7 देखि 9 गते सम्म
5: र वडा नम्बर 9 को कार्यालय भदौ 10 देखि 11 गते सम्म।
4: सबै वडाहरूमा शिविर सञ्चालन हुने समय बिहान 8 बजे देखि साँझ 5 बजे सम्म।
6: याद गर्नुहोस्, 60 वर्ष उमेर नपुगेका विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले अर्को विवाह नगरेको सिफारिस र अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र अनिवार्य साथमा लिई आउनु पर्नेछ।
4: थप जानकारीको लागि टीकापुर नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्पर्क नम्बर 9845018888, 9845015356 र 9846134434।
5: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर ओडा कार्यालयको जरूरी सूचना। ओडाका सड़कहरू नजिक पशु चौपाया बाँधेर राख्दा सड़कमा उभिने पशु चौपाया बाटोमा पुग्ने गरी बाँड्दा दुर्घटना हुने बाटोमा आवत जावत गर्न अवरोध हुने र बाटो बिग्रिने भएकाले गाई गोरु भैंसी बाख्राहरू बाटोमा पुग्ने गरी नबाँड्न यो सूचना जारी गरिएको छ। कसैले असभ्य तरिकाले गाई गोरु बाटोमा बाँधेको पाइएमा निगरानी गर्न बाटोबाट हटाउन टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू युवा समाजसेवीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ। बाँध्न आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको पाइएमा टीकापुर नगरपालिकाको एक नम्बर ओडा कार्यालयको फोन नम्बर 98484405998 वा नगर प्रहरीको फोन नम्बर 98484637 खबर गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। एक नम्बर ओडा कार्यालय टीकापुर नगरपालिका।
1: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
2: काजल छै उडन चरी दिन रात भौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी आई गयो रेडियो खोल देउडा चौतारी
3: झल्को आउँदो बाह्रै मास दिन काटु म क्यारी बाटो हेरी बस्याकी छ घर मेरी प्यारी
2: एकडाली बाजगुराउँसको एकडाली साजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको यति सौराई क्या लाग्दो छ परदेशी बाजको।

0: कब्बू कापिए रहिथ, कब्बू पेन्सिल रहिथ, कब्बू झलै फटाका आजिथ, का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से त लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढा लिखे का हुई थी जरम भर भर बराइटी राहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला जस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाइम, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाइम।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: हेरा में दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो तर के गर्नु यो भर्ना भएको जिंदगी कति बेला के आपत आई पर्छ थाहै हुँदैन सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
5: हो नि बिरे मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि हेर्न अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो यसो के इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि हेर्न
6: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरी दिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले
5: के गर्छ र सन मेडिकेयरले
6: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना एपेन्डिसाइटिस पेनक्रियाटाइटिस हृदय घात मस्तिष्क घात विद्युतीय वा अन्य जलन डुबान विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा
5: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त
6: हो कान्छा अपरजट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले
5: चिया पनि खाइयो कुरो पनि बुझ्यो है केटा हो।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाउ पृथ्वी बचाउ
4: प्लास्टिक हटाउ पृथ्वी बचाउ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वान नन्दिए भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846149261।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मैं सीता चौधरी के राम राम। अपने उग्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मयलाभ सम्रपात्र नेपाली पात्र मफी सुन्टी ढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से टीकापुर ब्लक नम्बर 19 में शुभकामना टोल विकास संस्था साधारण सभा तथा ज्येष्ठ नागरिक प्रतीक्षालय उद्घाटन कार्यक्रम। अतरे मचिस ड्राइवर के लाग लगलग मोटरसाइकिल ले जाके युवक फरार। दुर्घटनामा पर्के मृत्यु 4 घाइते। जुम्लामा ग्यास लिन से 2 दिन से लाइन। पूरा खबर शुभकामना टोल विकास संस्था के प्रथम साधारण सभा हुई। साधारण सभा के अवसर में टीकापुर ब्लक नंबर 19 में स्थित टोल विकास संस्था निर्माण कलक ज्येष्ठ नागरिक प्रतीक्षालय के समेत उद्घाटन हुई। शुभकामना टोल विकास संस्था के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह कोवर की अध्यक्ष में हुई कार्यक्रम में टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 वड़ा अध्यक्ष मोहन लोहार विकट टीकापुर नगरपालिका के टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि अन्तर्गत टोल विकास संस्था गठन उटिरहल बटेलोबाट टीकापुरमा 200 बोटी टोल विकास संस्थाबाट वडा नम्बर 1 मा केले 110 टोल विकास संस्था गठन हुलबा। स्थानीय सरकारकी विकासकी काम कलक नागरिक अनुभूति कार्यकला टोल विकास संस्था संघ सहकार्य कलक विकास कर्ना लगलग बटेलोबाट युनाइटेड एकेडेमी स्कूल के प्राचार्य परमेश्वर साहू आपन टोल विकास के कार्य लगलसे विद्यालय के तर्फ मसेफी सहयोग रहल बोटिलोबाट वडा सदस्य गणेश घटी मगर ज्येष्ठ नागरिक सम्मान सकू जहान के दायित्व हो के बोटेटी आपन टोल आप बनेना मजा हुलक काम में सकू जहान के सहयोग रहना बोटिलोबाट समाजसेवी तारा प्रसाद अधिकारी अपना पूर्व प्रहरी लग बोटेटी अपना प्रहरी बाट अवकाश लग दिन ज्येष्ठ नागरिक के लाकुश कर्म के संकल्प लेके टीकापुर में ज्येष्ठ नागरिक भवन बनेलग बोटिलोबाट कार्यक्रम में वड़ा अध्यक्ष मोहन लोहार विक प्रतीक्षालय निर्माण में सकेना परमेश्वर साहू तारा प्रसाद अधिकारी दुर्गा देवी रिमाल जसला वड़ा के सम्मान कलबाट कार्यक्रम में नेत्र बहादुर राव लगायत बोल रहे। धनराज सिंह स्वागत कल कार्यक्रम संचालन टोल विकास संस्था के सचिव भद्र बहादुर कल रहे। साधारण सभा टोल विकास संस्था में नया कार्य समिति चयन कलबाट संस्था के अध्यक्ष नेत्र बहादुर रावल उपाध्यक्ष कमला कुंवर सचिव भद्र बहादुर रावल कोषाध्यक्ष ममता रिमाल सहसचिव सुजिता तिरुवा चयन हुलबाट। कैलाली की अतरिया स्थित बाबू अटो सेल मसेट्रेस ड्राइवर कना वाहना में एक युवक मोटरसाइकिल के फरार हुईबाट साउन 23 गते मोटरसाइकिल खरीद करना कति टेस्ट ड्राइवर के लाग मोटरसाइकिल मंगलक युवक लैजा के मोटरसाइकिल हालसम फिर्ता निकलक अटो सेल से जनेलबा फरार युवक के लगलग मोटरसाइकिल नंबर सुदूरपश्चिम पर्दे 01012/7672 रहलवा अटो सेल्स फरार युवक के तस्वीर समेत सार्वजनिक कति वहां चिनाव देखना व्यक्ति को तत्काल जानकारी कराई देखला आग्रह कलबाट अटो सेल्स के संचालक बाबू भट्टराई युवक के तस्वीरों घटना बारे भिडियो सार्वजनिक कलक पाछ वहां ठाव में सीफी वहां स्नेह करके मोटरसाइकिल लजाए के जानकारी करेन लगलग बुटिलबाट। खोज खबर में फिर विश्राम विश्राम पाछ फिर से विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
5: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिलाको महिनावारी गडबडीको समस्या
5: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
5: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
5: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
5: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-53 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
0: झापाकी वीरतामोड नगरपालिका दुई स्थित ब्राहाकोटी गाउँमा अटो ट्र्याक्टर एक आपसमा ठोके खाएकी एकजनाकी मृत्यु हुल सेफे चारजना घाइते हुलबाट आइतबार दिनकै वीरतामोड दुई स्थित भित्री सड़कमा मे एक H3842 नम्बरकै अटो मे एक T715 नम्बरकै ट्र्याक्टर एक आपसमा जोडके अटोमा सवार अटो चालक त्यामूल हक सहित अन्य चारजना घाइते हुलबाट उहाँ अटोमा सवार छापा गाउँपालिका चार भामटोली निवासी 35 वर्षीय सुखी बीबी के उपचार के क्रम दिन के 1:30 बजे बीटा सिटी अस्पताल बीटा मोडमा मृत्यु हुलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा जाने लबा उक्त दुर्घटनामा परके घाइते अन्य के बीटा सिटी अस्पतालमा उपचार हुटिरहल प्रहरी जाने लबा जुम्लामा खाना पकाएकला ग्यासकै अभाव फुलपाछ उपभोक्ता दुई दिनसे ग्यास लेखला लाइनमा बैठना बाध्य हुलबाट ग्यास ऐना प्रतीक्षामा शनिबार बिहानसे बस पार्कका क्षेत्रमा उपभोक्ताकै लाइन लगलबाट स्थानीय जयशंकर धितालके अनुसार ग्यास लिन बिहानसे मनिनकी भीट लागलबा एकठो सिलिण्डर लिन घण्टोसम्म लाइनमा बैठपना अवस्था आइलक उहाँ बोटिलबाट ग्यास डिलर लगल स्टोर एण्ड सप्लायर शनिबार दिनकै 3 बजे 350 ठो सिलिण्डर वितरण गर्न तयारी कलशेफे कर्णाली राजमार्गमा गाड़ी बिग्रल पाछ ग्यास बोकलक गाड़ी रातके जुम्ला पुगल रह ग्यास आइल पछ शनिबार बिहानसे वितरण शुरू कलक डिलरके संचालक पृथ्वी बहादुर शाही जानकारी दिलबाट उहाँके अनुसार नेपाल ग्यासके सिलिण्डर आइल पछ वितरणके तयारी करगिलबा गत शनिबार फेरि ओहो संख्यामा सिलिण्डर वितरण कलक उहाँ बोटिलबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम पाछ

0: आल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
1: मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26 जमरापारी टीकापुर कैलाली।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीका पूरे एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर की आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूले भी।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलतु
0: उहे मारे तो तू हिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाईलाई थाई रही ना चा बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लगाए सोलर इन्वर्टर में लगने बैटरी पनी सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनी पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनी को 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पो मा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइज का टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848578228

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो काम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 5143 26
3: दाजू हेर्नुस् न भाउजूले बिरामले च्याप्दै गइराख्या छ तपाई भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि दुरु दुरु
4: के गरु त म यत्रो उपचार गरिसके कति ठाउँमा लगिसके तर निकै हुन्न
3: दाई बरु एक पटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि
4: तैले भन्छस् भने लौ जान्न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एक पटक
5: सत्कार मेडिकल सेवा का खास सेवाहरू ओपीडी सेवा भिडियो एक्सरे सेवा ल्याब अर्थात प्रयोगशाला सेवा ईसीजी सेवा मेडिकल सेवा ईएनटी सेवा प्लास्टर सेवा बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म डाक्टर हेमन्त स्वार टिकापुर ब्लक नम्बर 7 गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड टिकापुर फोन नम्बर 091-560-095 मोबाइल नम्बर 98-484-27-359

0: फुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा से वस्त बाटिन गटिलो ठाउसे झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर बर
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कापी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलेको सूचना।
1: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ एग्रिकल्चरमा स्नातक तह बीएससी एजीमा नियमित तर्फ 6 जना र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी 10 जनाका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ।
0: स्कूल अफ एग्रिकल्चरमा बीएससी किन पढ्ने?
1: सुविधा सम्पन्न भवनमा आधुनिक प्रयोगशालामा अभ्यास गराइने,
0: आफ्नै फार्म हाउसमा अभ्यास गराइने।
1: सुदूरपश्चिमका 9 वटै जिल्लाबाट 1-1 जना र प्रवेश परीक्षाको सूचीमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सहित नियमित तर्फ 25% आरक्षित छात्रवृत्ति कोटा रहेको,
0: अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा सबैभन्दा कम शुल्कमा पढाइ हुने,
1: स्नातक उत्तीर्ण सबै विद्यार्थी स्वदेश र विदेशमा गई अध्ययन रोजगारी र उद्यममा संलग्न भइसकेको,
0: अनलाइन र अफलाइनबाट समेत फारम भर्न सक्नुहुनेछ।
1: आवेदन फारम भर्ने मिति 2083 साउन 25 गतेसम्म रहेको छ।
0: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन 2083 साउन 30 गते बिहान 11 बजे प्रवेश परीक्षा केन्द्रहरू स्कूल अफ एग्रिकल्चर टिकापुर काठमाडौँको लागि पछि निर्धारण गरिनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रिकल्चर टिकापुर www.agriculture.fwu.edu.np मा लगन गर्न सकिनेछ।
1: सम्पर्कका लागि 091-560-265, 98-491-10487, 98-486-08-306 र 98-462-78-174 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
2: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर। अबदेखि टिकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको प्रत्येक शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले साउन 30 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टिकापुर अस्पताल, टिकापुर, कैलाली।
3: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
4: जब देखनो तो हिन है।
3: यदि मन परत हुई कले से अपन मनन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कले से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: 11 प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
1: हाड जोड्ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषीकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठीघर को शल्यक्रिया सेवा
1: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
0: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
1: रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
0: दन्त रोग सेवा
1: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
0: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
2: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
0: र सिटी स्कैन सेवा
1: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बालबालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
0: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
1: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
0: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
1: हिंसा पीड़ितहरू का लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लीगल सेवा
0: सब परीक्षण सेवा सर्पदंश को उपचार
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासन को फोन नम्बर 091560488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97628435 उपेन्द्र शाह 98216024 57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरी को फोन नम्बर 98557853622 मा खबर गर्नुहोला वा टीकापुर अस्पताल को क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।

0: लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।